संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जाड़न लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो सात विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़नर कीसर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मश प्याले

पद पाया। सूखे काष्ठ हरिया रहा, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी धरिया। सिर से रिजिक संभाहे ठाकुर, काहे मन भउ करिया। उड़े उड़े आवै सह को सत, पाछे बचरे शरिया।

सेवक सिख सब कर तार मोर अच्छा निज करदै करे सब परन को आसन करे पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं।

संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट न आए हैं, रक्षा होए ताए सब काला। दोष अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टन जाए न हर हो, ताके ताप तनिक में हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होए, दुष्ट शास वै सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा। काल फास्ते ताहे उबारा, जिनर नाम तिहारो का, दार दुष्ट दुख तेरा, खड़के तुम्हें।

बंदों कार्य अनुराग श्री गुरु शब्द कमाई जिन जीते पंच बेकार तेन संतन का वंदना सिर चरणन पर तार एकंकार सतगुरु तिह प्रसाद सच होए।

नवली कर्म करे बवासन जैन मार्ग संजमा साधन नेम क्रेम का सीख जावे तो भी हो में मैल न जावे हर के नाम संसार कुछ नाही नानक गुरमुख नाम जत गत पाए मन कामना तीर्थ दे छुटे गर्ग मन मनते हुटे सोच करे दिन और रात मन की बैल न तांते जात ऐस दही को बहुत साधना करे मनते कबू न भी खैटरे जल धूवे बहुत नीत चौध काहो काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक ना उतरे पतत बहुमूच बहुत स्याण जमका भौ व्यापै अनख जतन का तिस न त्रापै पेख अनेक अगने बुझे कूट पाओ दरगे न सिजे छूट तनाई ऊ प्याल मोह प्यापे माया जाल अवर करतू सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तेने।

रत त्याग कौटी संग रचे साच छोड़ झूठ संग मचै जो छिड़ना सो अस्तर कर माने जो होम सो धूर पराने छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग साई तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तोए कर प्रीत पासम संग होए अंध कूफ में पित बिकराल नानक आलो प्रभु दयाल करतूत पशु की मान जात लोग पिचारा करे दिन रात बाहर भेखे अंतर मलमा शब्द ने कछ करे छपाया

जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मुक्त तुता को जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तेजे जान मन सदा हजूर है। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराज। जय प्रसाद साहब की कथ हो नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सुनाओ आप।

दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान अपन खेल आप कर देखै खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत आप जय पसरे पसार संत प्रताप दोहूं पाका आप है धनी उनकी स्वभाव नू बनी आपे कौ तो करे आनंद चोज आपे रस पूजन अरजोग जिस भावे तिसे अपन ना लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेस।

सदा सदा बलिहार, पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कर पार, अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्यात, प्रित पालै जीवन बहुत भांत जो जो रचियो सो तिसे त्यात, जिस भावे तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए, माने अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया, जन लागा हर एक नाए तस की आस न बैठी जाए, सेवको सेवा बनाए हुकम बूझ परम पद।

को जाए उपरे राखनार त्याए निरपो जपे सगल पो मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे जैस प्रभु राखे तिस नाही दुख नाम जात मन हो सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तह जन को कोह न पहुंचन हार सरू को ठंडा कर सूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जा की दृष्ट दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ चरण कमल जा के अनूप सफल दर्शन सुंदर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामे पुरख प्रधान जैस मन बसे सो होत निहाल ताके निकट न आवत काल।

कथना कथी ना आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे प्रवाह, साचा साहिब साच नाए, भाख्या पाहो अपार। आखै है मंगै है देह देह, दात करे दातार, फेर कै अगै रखियै जित दिसै दरबार। मुहाओं कै बोलन बोलिए, जित सुनता।

निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सो है दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार करते कह करणे नाहीं सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जन सूत। जे को पुजै होवै सचियार तबलै ऊपर केता।

असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जा है जोर, असंख गल वड हत्या कमा है, असंख पापी पाप कर जा है, असंख कूड़ियार कूड़े फिरा है, असंख मलेश माल भख खा है, असंख निंदक सिर कर है भार, नानक नीच कहै विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह है सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन एह लिखे तिस सिरना।

ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहानक वात सहस ठारह कहानक ते पास लू एक धात लेखा होए ता लिखिए लिखै होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत न पाइया नदियां अतै वाह पवह समुंद न जानिय है समुंद साह सुल्तान गृह सेती माल धन।

न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे उपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड़ आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिख्या ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगह जोध पार।

लोकेन मस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समस्तोल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओघ हर्ता परं परं परमेश्वरं तोष पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं।

अजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमन्त्रं नमो सर्वयन्त्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरङ्गे त्रिभङ्गे अनङ्गे नमो जीवजीवं नमो बीजबीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे गोकर्मं परणासी सदा सर्वदा हृदसिद्धं निवासी चर्पटछन्द त्वत्प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंद प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजौन पुरख अपार सर्व मांत्र मां देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल।

राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अणभूत अंग।

केसरवत्र कालय, केसरवत्र पालय, केसरवत्र हंता, केसरवत्र गंता, केसरवत्र भेखी, केसरवत्र पेखी, केसरवत्र काजय, केसरवत्र राजय, केसरवत्र सोखय, केसरवत्र पोखय, केसरवत्र त्राणय, केसरवत्र प्राणय, केसरवत्र देशय, केसरवत्र भेषय, केसरवत्र मान्यय, सदैवं प्रधानय, केसरवत्र जाप्यय, केसरवत्र थाप्यय, केसरवत्र भानय, केसरवत्र मानय, केसरवत्र इंद्रय, केसरवत्र चंद्रय, के सर्वं कलीमय, के परमं फहीमय, के अकल अलामय, के साहिब कलामय, के हुस्नल वजू हैं, तमाम रुजू हैं, हमेशल सलामय, सलीकत मुदामय, गनीमल सिकस्तय, गरीबुल परस्तय, बिलंदुल मकानय, जमीनल जमानय, तमीजुल तमामय, रजुअल निदानय, हरीपुल अजीमय, रजायक यकीनय, अनेकल तरंग हैं, अभेद हैं, अपंग हैं, अजीजुल निवाज हैं, गणिमल खिराज हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिभुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, संयुक्त सदा हैं, सदैवं स्वरूप हैं, अभेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तल सलाम हैं, सदैवल काम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओं आद रूपे, अनाद स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकामे, त्रिपरगं त्रिपादे, अगंजे अगादे, सुभं सर्वभागे, सुसर्वानुराग, त्रिभुक्त स्वरूप हैं, अशिज हैं, अछूत हैं, कैनर्कं प्रणास हैं, पृथ्वल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, विभुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुक्त प्रभा हैं, अनुभुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, चाचरी छंद अभंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, भर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अवय हैं, अभूत हैं, अतूत हैं, अनास हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अभगत हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं,

सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणं सर्वंत्राणं सर्वंकर्मं सर्वंतर्मं सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता सावच्छन्दो त्वप्रसाद। नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे।

काल मुहूर्त अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत

0: जग आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी
1: सच
0: इको अंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு
0: வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு
1: வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு
0: வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு
1: வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு
0: வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு வாய்குரு

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

अपिलहुलाय जन देहु मति उपदेश विचहू परम जाय ज्योतिर लिखिया लेख।

0: ओंकार सतनाम
1: जह राज हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर बाणी के बोहत काजल के जहाज हलत पलत के राखे गद्दी ते विराजमान शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की निघी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सत्कारी साध संगत सतगुरु जी की बख्शे फतेह की सांझ पाओ सारे माई भाई गज वज के बोलो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत की है जो ऐतवार के विशेष दवाना विच अपनी निघी गोद विच सानू बैठण दा सुभाग सतगुरु जी ने बख्शिश किया है। गुरु प्यारे हुणे ही आपां दो श्री खंड पाठां दे भोग दे सलोक जिहड़े है सरवण कर रहे सां। सैक्रामेंटो तों आए साल ये गुरमुख परिवार भाई योगा सिंह जी समुचियां 10-12 फैमलियां सैक्रामेंटो की धरती तो आके आए साल एलसबराटे गुरु घर विखे अपनी श्रद्धा भावना आस्था जिहड़ी है वह प्रगट करते हैं और लंगरां दे विच बेअंत तरह दीयां सेवा जिहड़ियां संगतां लई करदे। सतगुरु जी कृपा करन इन्हां गुरमुख परिवारां नूं इसे तरह चढ़दी कला दे रोगता अपने दरों करों गुरसिखी जीवन सेवा सिमरन की दात बख्श के कृतार्थ करन। गुरु प्यारे वड्डे भाग आ साडे जो सतगुरु जी ने त्रुट के संगत करन दा सुभाग बख्शिया है। महाराज जी दे वचन है रे मन राम सिंह कर प्रीत सरवण गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत कर साध संगत सिमर माधो होहे पतल पनीत काल ब्याल जो परयो डुलै मुख पसारै मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ रखियो चीत कह नानक राम भजलै जात उसर बीत। जिहड़ा ये अवसर मिलिया होया कहिंदे तुहाडा ये बीत जाएगा। सतगुरु जी कृपा करन तुहानू सब नू महाराज जी अपने दरों करों खुशियां खेड़े चढ़दी कला वाला जीवन और आनंदमई जीवन जिहड़ा है बख्श के कृतार्थ करन। आओ दीवान की प्रारंभता में सारियां तों पहलां अपने गुरु घर का हजूरी रागी जत्था भाई साहब भाई हरबख्श सिंह जी जो 11:15 बजे तक कीर्तन की हाजिरी भरनगे उत्तों उपरंत जिहड़ा अगला प्रोग्राम दस्या जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।